X का FM का वो उलंगा एम तो कुछ अवंगा पर खरम को सब जैसे का के रद हो के कबे तू का खाई से पंगा वो कोई खाई को रद के नुमरो या होने तें सेवा पेन नेखा FM मन तो कोई अवंगा उलंगा कोई सब जैसे का के रद हो के सिद्ध के एम तो कुछ अवंगा उलंगा जी चांगो सब जैसे का के आप रखम को कोंगा में वो तंगल में कनुसे अगो से दके खसीने के चुगुना कने बुसे को अच्छी मऊ तुले पंगा को से तेगा मन को से या को मई तेगी कवा को मो कम कवा ची के कनु से का खंग या तेगी अपन मो बतु तु तर तर या मन को मको मई तेगी ये जी चे को क कम को के चुगुना मले मई पंगा बा को से तेगी को कम को से कने उलु जी से या ची चन न मन को से कने उलु जी से पंगा बा तु तु आ सिंग चुगुना मई तेगी चुगुना मले मई कन मई या मुरी तब द पंगा बा आंगे थुजे सिगे या तने ना ngo kam ngo sia man ngo sia wo ji ge ka am ten chong ngo la ngo sa bu si si ka ke ra du ke ka ba tu a khai si pang ba a ku e khai ko ra du ke nu ru ya woni ten se ba pen ne kha fm man tu ko ngo la ngo ke mo ngo ma so ten du de ngo ba o la ngo